0: ना सौना कथा किया ने बा आर्य प्रतिष्ठा ने ने मा हमें खर खाले हुए ने तो या बे फतेह ने बे तो हालों में छीने ने हमें खर तो ने बा प्रवेश अतो सिगुर पर ने कौन माय तोलों कारिक अमिला बेरे देश लोकोना उसी ने ओरिजिन ने बा
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitanya Hasoru Malu, Balorung Ohin Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.